सरोज गोखले ने गाई संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं वीणा भक्ति मंडल ने गाई ये भक्ति रचना।

वीणा भक्ति मंडल ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत कानो पात्रा की भक्ति रचना हेमलता कोनवड़ के स्वर में।

हेमलता कोनवड ने गाई संत कान्हो पात्रा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुहासिनी कोरटकर के स्वर में संत जनाबाई की ये भक्ति रचना।

संत जनाबाई ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुहासिनी कोरटकर के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत तुलसीदास लिखित ये भक्ति रचना चंद्रशेखर गाडगिल के स्वर में, जिसे स्वरबद्ध किया है रविन्द्र खासनेस ने।

चंद्रशेखर गाडगिळ के स्वर में संत तुलसीदास रचित ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसे स्वरबद्ध किया था रविंद्र खासनीस ने। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर समय हर पल।

ಹೊರಗೆ ಮಿಲ್ದು ಹೊರಗೆ ಮಿಲ್ದು ಒಳಗೆ ಮೀಯದ.

0: तीन ताल मंगल गावो।
1: लिसन टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय श्री गणपति भट्ट। राग चारुकेशी, विलंबित झपताल मनसुमीरा, धृत तीन ताल मंगल गावो।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग गुड़ जोड़ी तोड़ी पर सितार वादन सुनवाएंगे. कलाकार हैं संदीप बंदोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं असीत जाना. तो लीजिए प्रस्तुत है राग गुड़ जोड़ी तोड़ी पर सितार वादन. कलाकार हैं संदीप बंदोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani instrumental recitals. Listen first to a sitar recital in the rag Gurjari Todi. Our artist is Sandeep Bondopadhyay. Accompanying him on the tabla is Oshit Jana. Listen now to the rag Gurjari Todi on the sitar. Our artist Sandeep Bondopadhyay.

0: अभी आप संदीप बंदोपाध्याय से राग गुरजोड़ी तोड़ी पर सितार वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे औसीद जाना। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको 3 ताल पर तबला वादन सुनवाएंगे। कलाकार हैं गोपाल मिश्रा। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पिंटू रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है 3 ताल पर तबला वादन। कलाकार हैं गोपाल मिश्रा।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग गुरजारी टोड़ी। अवर आर्टिस्ट वॉज संदीप बंदोपाध्याय। अकंपनिंग हिम ऑन द तबला वॉज औसीद जाना। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to a tabla recital in Tintal. Our artist is Gopal Mishra. Accompanying our artist on the harmonium is Pintu Roy. Listen now to the tabla in Tintal. Our artist, Gopal Mishra.

धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड़का धड

0: अभी आप गोपाल मिश्रा से तीन ताल पर तबला वादन सुन रहे थे। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे पिंटू रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल। आवर आर्टिस्ट वॉज गोपाल मिश्रा। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द हारमोनियम वॉज Pintu Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं. आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मंजुषा पाटिल का गायन. मंजुषा पाटिल अपने गायन का आरंभ कर रही है राग बिहाग से. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है माँ धन धनरी. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है लट उलझी सुलझा जा बालम. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजू परांस पे और तबले पर है मिलिंद पोटे. सुनते हैं राग बिहाग, कलाकार मंजुषा पाटिल.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मंजूषा पाटिल का गाया हुआ राग बिहाग। आपके साथ हारमोनियम पर थे राजू परांजपे, तबले पर थे मिलिंद पोटे। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं मंजूषा पाटिल का गाया हुआ राग बागेश्री। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है सखी मन लागे ना। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है जारे जारे बदरा तुजारे। आपके साथ हारमोनियम पर है राजू परांजपे, तबले पर है मिलिंद पोटे। सुनते हैं राग बागेश्री, कलाकार मंजूषा पाटिल।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मंजुषा पाटिल का गाया हुआ राग बागेश्वरी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे राजू परांस पे और तबले पर थे मिलिंद पोटे। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं लाल मनाए और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ektal. The lyrics are Lal Manaye. This will be followed by a composition in Drut Khayal set to Tintal. The lyrics of this composition are Allah Jane, Allah Jane.

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बिलावल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दैया कहाँ गए वो लोग, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: दैट वॉज राग तोड़ी। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, श्री राजेंद्र सिंह नाउ प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल, इन विच ही सिंग्स फर्स्ट अ ख्याल सेट टू विलंबित एकताल। द लिरिक्स आर दैया कहाँ गए वो लोग। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर लाडली लाल फूल आवत।

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अलहैया बिलावल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अलहैया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. This was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल. कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत. सुनते हैं शास्त्रीय गायन. कलाकार है आनंद भाटे. प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग गुजरी तोड़ी. सुनते हैं मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है आज मोरे मन लागी, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है बे गुन गुन गावे. सात संगत तबला माधव मोड़क और हारमोनियम राहुल गोड़े. तो आइए सुनते हैं आनंद भाटे द्वारा प्रस्तुत राग गुजरी तोड़ी.

श्रोताओ, आप सुन रहे थे आनंद भाटे द्वारा प्रस्तुत राग गुजरी तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे माधव मोड़क, हारमोनियम पर थे राहुल गोड़े। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आनंद भाटे द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया कल्याण। विलंबित रचना के बोल है आज सुबन और द्रुत रचना के बोल है बहुत दिन बीते। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं माधव मोड़क, हारमोनियम पर है राहुल गोड़े। तो आइए सुनते हैं राग पुरिया कल्याण, कलाकार आनंद भाटे।

आप सुन रहे थे आनंद भाटे द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया कल्याण। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे माधव मोड़क, हारमोनियम पर थे राहुल गोड़े। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग चंद्र कौंस पर ख्याल. कलाकार हैं प्रबीर बंदोपाध्याय. आपके साथ तबले पर हैं जॉयदास गुप्ता और हारमोनियम पर हैं अमिताभ भट्टाचार्य. तो लीजिए प्रस्तुत है राग चंद्र कौंस पर ख्याल. कलाकार हैं प्रबीर बंदोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Khayal in the Rag Chandra Kaus. Our artist is Prabir Bondopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Joy Das Gupta and on the harmonium is Amitava Bhattacharya. Listen now to Khayal in the Rag Chandra Kaus. Our artist, Prabir Bondopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग चंद्र कौंस पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे प्रवीर बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे जॉयदास गुप्ता और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर यशराज वादन। कलाकार हैं शमिता बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर हैं नवारुण कुमार दत्ता। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर यशराज वादन। कलाकार हैं शमिता बंदोपाध्याय।
1: You were listening to Khayal in the Raag Chandrakaans. Our artist was Prabir Bandopadhyay. Accompanying him on the tabla was Joydas Gupta and on the harmonium was Amitava Bhattacharya. This is Raagam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present an Esraj recital. Listen to the Esraj in the Raag Bageshri. Our artist is Shamita Bandopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Navarun Kumar Datta. Listen now to the Esraj in the Raag Bageshri. Our artist, Shamita Bandopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बागेश्वरी पर यशराज वादन सुन रहे थे। कलाकार थी शमिता बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे नवारुण कुमार दत्ता। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिस्निंग टू द यशराज इन द राग बागेश्वरी। आवर आर्टिस्ट वॉज शमिता बंदोपाध्याय। Accompanying our artist on the tabla was Navarun Kumar Datta. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन. कलाकार हैं कृष्णराम चौधरी. राग है बिलास खानी तोड़ी. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani Shehnai recital by Krishnaram Chaudhary. The rendition commences with the rag Bilas Khani Todi.

आप सुन रहे हैं शहनाई वादन, कलाकार हैं कृष्णा राम चौधरी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णा राम चौधरी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग केदार। मध्य लयगत झप ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग केदार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन। कलाकार थे कृष्णराम चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णराम चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Run 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है ऋषिकेश गांगुटे का गाया राग नटभ्रम. विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है. बोल है करम करो तुम मो पे साई. और द्रुत बंदिश तीन ताल पे निबद्ध है जिसके बोल है रब साथ सिरा जन्म आधार. सारंगी पर आपके साथ संगत कर रहे हैं उस्ताद नसीर खान और तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र. तो आइए सुनते हैं रव नट भैरव ऋषिकेश गांगुड़ी की आवाज में. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुड़ी. ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग नट भैरव. बोथ द कॉम्पोजिशंस विलंबित एंड द्रुत आर सेट इन तीन ताल. अकॉम्पनिंग हिम ऑन सारंगी उस्ताद नसीर हुसैन खां एंड ऑन तबला शीतल प्रसाद मिश्र.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अरद भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे ऋषिकेश गांगुडे का गाया राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग शुद्ध कल्याण। विलंबित और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ सारंगी पे संगत कर रहे हैं उस्ताद नसीर खां और तबले पर संगति दे रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। You are listening Raag Nat Bhairav by Rishikesh Gangude. Now, he is presenting Raag Shuddha Kalyan. Vilambi and Drut set in Tintal. Accompanying him on Sarangi, Ustad Nasir Kha and on Tabla, Sheetal Prasad Mishra.

अभी आप सुन रहे ऋषिकेश गांगुर्डे का गाया राग शुद्ध कल्याण। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। यह कार्यक्रम आप तक पहुंच आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। नाउ यू आर लिसनिंग ऋषिकेश गांगुर्डे ऑन राग शुद्ध कल्याण। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है काकुली मुखर्जी की गाई ठुमरी. बोल हैं जाओ वही तुम श्याम. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय काकुली मुखर्जी. शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद अख्तर हसन. शी फर्स्ट प्रेजेंट्स अ ठुमरी इन खमाज़.

0: अभी आप काकोली मुखर्जी की गाई ठुमरी सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए दादरा बोल हैं अजहू न आए हमरे सैया।
1: यू जस्ट हर्ड अ ठुमरी इन कमाज। लिसन नेक्स्ट टू अ दादरा।

0: अभी आप काकुली मुखर्जी का गाया दादरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अख्तर हसन ने। और लीजिए अब सुनिए दादरा बोल हैं मोरे बलमुआ नहीं आए। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने।
1: यू जस्ट हर्ड अ दादरा बाय काकुली मुखर्जी। कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल शी प्रेजेंट्स अनदर दादरा।

0: कार्यक्रम के आखिर में सुनिए काकोली मुखर्जी का गाया दादरा, बोल हैं शाम तोहे नजरिया लग जाएगी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने।
1: यू जस्ट हर्ड अ दादरा सॉन्ग बाय काकोली मुखर्जी। शी कंक्लूड्स हर रिसाइटल विद अनदर दादरा।

0: अभी आप काकोली मुखर्जी की गाई ठुमरी और दादरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अख्तर हसन ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट दादरा वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय काकोली मुखर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद अख्तर हसन। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।

जय श्री भतीजा के स्वर में ये पारंपरिक सिंधी भक्तचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं ओंकार प्रभुघाटे से ये मराठी भक्ति रचना।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।